नमस्कार, सुप्रभात। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:55 और ठीक 46 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25

0: 20 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल।

0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेनजी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग सू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू श्यान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
2: ये है विविध भारती।
3: वंदन वार।

चिंतन। भूल करने में पाप तो है, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। ये कथन महात्मा गांधी का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत।

इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 288, जिसमें आप सुनेंगे सुंदरकांड। ये कार्यक्रम होगा 6:35 पर। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता में श्रृंखला ताल प्रवाह का भाग 6। कलाकार तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम को शाम 6:45 पर पुनः सुना जा सकता है। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम होगा सुबह 7 और 7:30 पर। हम है राही प्यार के। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद सुनिए समाचार प्रभात सुबह 8:00। 8:15 पर त्रिवेणी में आज आप सुनेंगे आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को दिन में 2 पुनः सुन सकते हैं। चित्रलोक कार्यक्रम में सुनिए नए गीत सुबह 8:30 पर, और सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम। केंद्रित होगा फिल्मकार किशोर साहू पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। चित्रपट संगीत का समय होगा दिन में 11:00 और 11:30 पर सुनिए मैटिनी शो। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का पुनर्वास विषय पर डॉक्टर संजय शर्मा से यूनुस खान की बातचीत। संपादन और प्रस्तुति राग

रविंद्र सिंह नेगी की। इस कार्यक्रम को रात्रि 11:30 पर पुनः सुना जा सकता है। दोपहर 12:00 सुनिए हिंदी में समाचार और यादों की महफिल कार्यक्रम 12:05 पर। सुरीला सफर यह कार्यक्रम होगा दिन में 1:00। श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ सकते हैं। 2:15 पर दोपहर समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। मनचाहे गीत में हमारे साथ ही शामिल होंगे आपके साथ कुछ पत्रों को लेकर, तो सुनिए ये कार्यक्रम दोपहर 3:00। नाट्य तरंग ये कार्यक्रम 3:30 पर दिन में आप सुन सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, लेखन रोमी शिरास का, निर्देशन मुद्रा राक्षस। दोपहर बाद 4:00 सुनिए पिटारा में बॉम्बे टॉकीज, अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत, संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक। इस बीच आप 6:00 सुनेंगे 5 मिनट के समाचार हिंदी में। शाम 6:30 पर सुनिए शेष कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत और संध्या रंजन शाम 6:35 पर। विशेष जयमाला में आप सुनेंगे संगीतकार कल्याण जी को शाम 7:00। इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए जिज्ञासा शाम 7:45 पर और हवा महल में सुनिए सुनो कहानी काबुलीवाला का भाग एक, कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वाचन अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। कार्यक्रम का समय रात्रि 8:00। 8:15 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम, 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9:00 होगा कार्यक्रम आपके लिए और 10:00 सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11:00 चित्रपट संगीत। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 288 और आज आप सुनेंगे सुंदरकांड।

रावण की आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ, किंतु कपड़ा लपेटते घी तेल लगाते हनुमान की पूंछ लंबी होती गई, नगर के भंडार खाली हो गए। नगर में घुमा फिराकर जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान ने लघु रूप धारण किया और अटारियों पर जा चढ़े। 49 पवन चले, पवन पुत्र जैसे आकाश छू रहे हों। सारा नगर धू धू कर जल उठा, नगरवासियों में त्राही त्राही मच गई। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जिन्होंने अग्नि की रचना की हनुमान उन्हीं के दूत थे, स्वयं उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उलट पलट कर हनुमान ने सारा नगर जला दिया और तब जाकर समुद्र में कूद पड़े। तत्पश्चात वे सीता के सम्मुख उपस्थित होते हैं।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम फिर उपस्थित हुए हैं तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्रा जी के साथ। मिश्रा जी,
2: जी
1: ताल प्रवाह पर कई तालों की चर्चा हो रही है। क्लासिकल में बहुत सारे तालों का नाम सुनते हैं, मत्त ताल, रुद्र ताल, पंचम सवारी, आड़ा चौताल, तिलवाड़ा वगैरह वगैरह। पिछली कड़ी में हमने लोक गीत पर आधारित, लोकगीत में या फिल्मी गानों में जो ताल काफी बजता है, दादरा का जिक्र
2: जी किया
1: आपने की थी, आपने बजाया भी है। और भी एक ताल फिल्म म्यूजिक में खूब प्रयोग होता है, उस ताल के बारे में आप बताएं।
2: मैं समझ गया दास बाबू, जहां आपका जिस तरफ इशारा है। पिछली कड़ी में हम थे दादरा
1: जी,
2: और दादरा के बड़े भाई थे, उनका नाम था कहरवा ताल।
1: अच्छा
2: जी हाँ, हम बड़े भाई इसलिए बोले कि जो हमारे श्रोता हैं उन कलाकारों के लिए नहीं, जो सीखने वाले कलाकार हैं, जो हमें सुन

0: रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जिनको तबला गाना इंस्ट्रूमेंट या नाच सीखने का शौक है, मैं बड़ा भाई इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब आपस में बड़े मित्र हैं, और जिसने तीन ताल को देख लिया
1: जी
0: वो सारे तालों को देख लेगा, क्योंकि तीन ताल हर ताल का राजा है, और कहरवा उसका छोटा भाई है, आठ मात्रे का है वो
1: जी,
0: धागे न तीन का धीन।
1: और ये दादरा का बड़ा भाई इसलिए कि दादरा चूंकि छह मात्रे का है, इसलिए
0: दादरा को मैं जब
1: बहुत खूब
0: जी हाँ, जब मैं मंच पे बजाता हूँ, जब स्टेज पे बजाता हूँ अपने बेटे सत्यप्रकाश के साथ, तो हमारे कई प्रोग्राम में फारूक भाई रहे हैं, विनोद भी रहे हैं, तो मैं मनीषा जी इसको देता हूँ कि एक स्त्री कैसे चलती है, वो मैंने दादरा दिया है, क्योंकि दादरा का बड़ा सुंदर चलन था, आपको मैंने कल दिखाया था, कभी मंच पे आप मुझे सुनिएगा कि एक नारी कैसे चलती है, धात्र कधीना था तीना, और ठीक उसका बड़ा भाई धागे न तीना कधीन, उसका जरा चलन जरा वीर पुरुष है थोड़ा सा पुरुष, तो देखिए दादरा का बड़ा भाई हो गया कहरवा, और तीन ताल का छोटा भाई हो गया कहरवा।
1: वाह,
0: तो आज हम इस कड़ी में कहरवा ताल को लेके चलते हैं जो आठ मात्रे का है।
1: क्या बात है,
0: और उसमें एक ताली एक खाली है।
1: वाह,
0: धा गे न ती खाली न धी न धा।
1: अच्छा, इस सिलसिले में मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा
0: जी,
1: कव्वाली में भी तो आठ मात्रे का ही कुछ ताल बजता है, कव्वाली ताल या उसका कुछ अलग नाम है?
0: नहीं, वही है, लेकिन उसकी स्पीड अलग होती है।
1: अच्छा,
0: हाँ, इसमें बहुत से फिल्मी गाने भी हैं।
1: अच्छा, इसमें और भी एक मैं बात जानना चाहूंगा
0: जी,
1: ये कहरबा के जो ठेके होते हैं, किताब में कुछ लिखा होता है, लेकिन बजाते वक्त जैसे गजल में या कव्वाली में या भजन में
0: जी
1: या ठुमरी में ही अलग अलग ठेके बजते हैं, अलग अलग बोल होते हैं, उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को
0: बहुत
1: थोड़ा कुछ बताइए।
0: अरे बाबा, बहुत सुंदर सवाल किया आप। देखिए क्या है, हमारा अंदाज तो वही है, इसके जो मेन ठेके हैं धा गे न ती न क धी न, अगर हम इसको किसी गजल के साथ या भजन के साथ बजाएंगे और अगर वही ठेका बजाएंगे तो वो उससे मैच नहीं होगा
1: जी,
0: उससे मैच नहीं होगा, इसलिए हम उसको प्रकार में पलटे में बजा के धा गे न ती न क धी न धा गे न। अब इसको हम थोड़ा सा अगर अंदाज

0: ये छपकी जो है ना, छपकी ये श्रेय जाता है नौशाद साहब को,
1: अच्छा,
0: एलपी साहब को, कि उन्होंने कहरवा को छपकी में कैसे लिया। इसको कहते हैं छपकी, जो धिरकिट हम बजाते हैं, देखिए वहीं से आया वो। है भाई अंदाज।
1: अच्छा, नाल में भी क्या तबले की अंदाज बसता है या
0: नहीं? नाल का अंदाज अलग हो गया, लेकिन ये आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं।
1: क्या बात है,
0: ये आ गया उड़ीसी के साथ जो बजना लगता, पर है कहरवा का चलन है वो, है
1: लावणी,
0: लावणी,
1: हाँ।
0: लावणी। तो हम आज आपके सामने छोटा सा कहरवा ताल में, श्रोता इसका आनंद लीजिए, देखिए क्या आनंद है। विनोद जी एक छोटा सा कुछ मुखड़ा बजाएंगे, मैं उसी में आता हूं
1: जरूर।

0: अब इसमें उड़ान, ये खास बनारस से आया है।
1: अच्छा,
0: ये बनारस में ही उड़ान बजाते हैं। उसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस अपने गुरु लोगों का जिन्होंने उस चीज को पैदा किया है।
1: जी,
0: कंठे बाबा किशन महाराज जी। उड़ान क्या चीज है
1: जी?
0: उसको कहते हैं, ठीक

0: ये था पहरवा का अंदाज।
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या खूबसूरत चीजें आप हमारे श्रोताओं के लिए पेश कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है।
0: इसमें आपको बता दूं और श्रोताओं को बता दूं कि नौशाद साहब, एक बात बताना चाहूंगा, कई बार हम जब प्रोग्राम बजाते थे, मतलब बजाते हैं, जब नौशाद साहब जिंदा थे
1: जी,
0: उन्होंने मेरा एक कायदा सुना था धीरे धीरे कीर्तन
1: जी,
0: तो वो बैठे थे और बोले कि बेटा कालीनाथ, तुमने बाया और धीरेकिट का बड़ा अच्छा अंदाज किया है, तो उनका मुझे आशीर्वाद मिला। उन्होंने एक पिक्चर गंगा जमुना, ताल कहरवा में ही है और राग है मिस्र पहाड़ी, हमारे रफी साहब ने गाए हैं, उसका गाना है, जरा सुर दे देना भैया। हो नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक होई बे करी, वही गाना है।

0: थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी छठी कड़ी। जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम संगीत सरिता। FM 100 2.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। श्री महाकालेश्वर मंदिर के रमणीय आंगन में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे मन के सारे दुख दूर हो गए हों। मन किसी अबोध बालक सा प्रतीत होता है और लगता है अपने पिता की गोद में आ गए हैं। इन्हीं पवित्र भावों के साथ आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव का पंचाक्षर स्तोत्र असित देसाई, हेमा देसाई और आलाप देसाई के स्वर में।

इस भक्ति रचना के साथ ही आज का महाकाल वंदन अब यहीं संपन्न होता है। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। बॉलीवुड बीट्स, नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 9:30 पर। अपनी पसंद के गीतों का आनंद लीजिएगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। सुबह 11:00 सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग, यादों की महफिल आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर, सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:30 पर आज आप सुन सकेंगे कार्यक्रम नाट्य तरंग। शाम 4:00 पिटारा में आज सुनिए कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज। हमारे केंद्र की सांध्यकालीन सभा के आरंभ में सुनिए कार्यक्रम युववाणी शाम 5:00। शाम 6:00 समय होता है भजन संध्या का। 6:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। मालवी बोली का विशेष कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज सुनिए शाम 7:21 पर। सुर्खियों में ये कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात 8:00। रात 8:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत हमारे केंद्र से विज्ञान भारती, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर।

एक बार पुनः आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे। रात्रि 11:10 से सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM गोल्ड के कार्यक्रम।

तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की तरक्की के लिए सुधार सरकार की मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों से वर्चुअली संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किनबितवा लिंक परियोजना की समीक्षा की और प्रदेश में बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय, सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। कल नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में उन्होंने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की भी सोच रही है। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना के जरिए देश में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और 50 लाख से ज्यादा परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना से जुड़े हैं।
1: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
0: आज शिवपुरी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन नवीन कृषि उपज मंडी पेपर समा में दोपहर 12 बजे से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसमें वर्चुअली शामिल होकर किसानों को संबोधित करेंगे। महोत्सव में कृषि और उससे जुड़े विभागों की योजनाओं पर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत उद्यमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकमगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं है और सरकार स्थानीय

0: उद्योगों को हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमी होटल, होम स्टे और इंडस्ट्रियल पार्क जैसी योजनाओं का लाभ उठाएं। डॉ. यादव ने कुंडेश्वर धाम को महाकाल लोक के तर्ज पर विकसित करने की भी बात कही।
1: सबका आग्रह है कुंडेश्वर को जरा कुंडेश्वर धाम बनाया जाए। तो कुंडेश्वर धाम भी जब बाबा महाकाल का महालोक बना और बाकी सब हुआ तो कुंडेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। टीकमगढ़ में एक बड़ी सौगात कुंडेश्वर भी देने की मैंने घोषणा की है। बहुत जल्दी टूरिज्म कमेटी है, इसमें टूरिज्म की एजेंसी आकर के उसके विकसित और व्यवस्थित प्लानिंग पे काम करते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थायी रूप से काम करे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किनबेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कल खजुराहो में परियोजना के काम की समीक्षा की और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। परियोजना पूरी होने पर प्रदेश में करीब 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और 44 लाख से ज्यादा लोगों को पेयजल मिलेगा। इसके अलावा 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का प्रावधान है। योजना से प्रदेश के 10 जिलों के 1,382 गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने 32 आईएएस और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कल तबादले किए हैं। इसके साथ ही ग्वालियर और सतना नगर निगम के आयुक्त भी बदले गए हैं। 10 जिलों के जिला पंचायत सीईओ को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में 2016 से 2024 बैच तक के अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, एसडीएम और सहायक कलेक्टर शामिल हैं। खंडवा के जिला पंचायत सीईओ डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा को सतना नगर निगम आयुक्त बनाया गया है, जबकि उनकी पत्नी सृष्टि देशमुख गौड़ा को रीवा जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने 2000 मेगावाट पीक पावर क्षमता की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से खरीद शुरू करने की सहमति जताई है। इसके लिए दोनों राज्यों की बिजली कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। समझौते का मकसद दोनों राज्यों में बिजली के अलग अलग मौसमी मांग का बेहतर इस्तेमाल करना है। प्रदेश में अक्टूबर से मार्च तक रबी सीजन में मांग बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश में गर्मियों और खरीफ सीजन में बिजली की मांग ज्यादा रहती है। ऐसे में कम मांग वाले समय की अतिरिक्त बिजली को दूसरे राज्य की जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। योजना का मकसद देश में मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाहगंज में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया, जबकि बाकी आवेदनों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना लोगों का अधिकार है, इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। प्रदेश के मुरैना जिले में लंबे समय से बंद कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए MSME विभाग ने इच्छुक कंपनियों से ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 5 बजे है और 16 सितंबर को प्रस्ताव खोले जाएंगे। प्रदेश को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया। 19 से 21 अगस्त तक चले इस कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, स्पेसटेक, AVGC, XR और ड्रोन निर्माण क्षेत्र की कंपनियों से निवेश और साझेदारी पर चर्चा हुई। प्रदेश के 2 सरकारी शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। भोपाल की डॉ. अर्चना शुक्ला और सीधी के शैलेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। दोनों को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा। डॉ. अर्चना शुक्ला भोपाल के सांदीपनी विद्यालय महात्मा गांधी

में उच्च माध्यमिक शिक्षिका हैं, वहीं सीधी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कंजवार के शिक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह का भी चयन हुआ है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून टर्फ चक्रवात और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले दो दिन से भारी बारिश हो रही है। कई जगह नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने आज सिवनी बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया भिंड निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना सागर दमोह समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले तीन दिन तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को नीदरलैंड्स के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड्स ने दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। इस जीत के साथ मौजूदा चैंपियन नीदरलैंड्स ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत उद्यम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में चमोसे की जनजाति और लोक अनुष्ठान सांस्कृतिक स्मृति और अभिप्राय विषय पर 2 दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया गया। आगरमालवा जिला अस्पताल परिसर से लगातार हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सतना में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह ने अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। झाबुआ में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर रोटला का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

नमस्कार, उठिए और देखिए आज की ये भोर कितनी ऊर्जा और ताजगी से भरी है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हर नई सुबह एक खाली कैनवास की तरह होती है और हमारे सकारात्मक विचार वो रंग हैं जिनसे हम अपना पूरा दिन खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत कुछ उजले और खुशी भरे रंगों के साथ करते हैं। शहर की गलियों में जीवन फिर से दौड़ने लगा है। अखबार वालों की साइकिल की घंटी और मंदिरों से आती प्रार्थनाओं की गूंज बता रही है कि अब शहर एक नए जोश के साथ अपने काम में जुट गया है। आप भी अपनी सारी उलझनें पीछे छोड़िए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में मैं आपकी दोस्त रश्मि बजाज भराड़िया आज 22 अगस्त 2026 की इस ऊर्जावान सुबह में आपका आत्मीय स्वागत करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत गीत के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म खानदान से ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

की सुप्रभात उज्जैन में हम आपके लिए लेकर आते हैं उज्जैन के विकास से जुड़ी हुई कुछ सकारात्मक खबरें। और पहली जानकारी आज की ये है कि शहर के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही सुंदर और भव्य योजना आकार लेने जा रही है। वाराणसी की तर्ज पर अब हमारे उज्जैन में भी शिप्रा तट पर नमो घाट का निर्माण होने जा रहा है। हरी फाटक बाईपास स्थित यूनिटी मॉल के पीछे प्रस्तावित इस घाट का मुख्य आकर्षण होगी भगवान श्री कृष्ण की लगभग 182 फीट ऊंची एक विशाल कांस्य प्रतिमा। इसका बाहरी हिस्सा ब्रॉन्ज का और अंदरूनी स्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील का होगा, जो इसे मजबूती और सुरक्षा प्रदान करेगा। इस घाट के बनने के बाद हर शाम यहाँ शिप्रा आरती भी आयोजित की जाएगी, ऐसा प्रस्तावित है। महाकाल लोक के बाद यह क्षेत्र भी शहर के प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होगा, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक नया विजुअल लैंडमार्क साबित होगा। और अब बढ़ते हैं हमारे सुप्रभात उज्जैन के उस भाग की ओर जिसका नाम है समाचार पत्रों से, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं आज के समाचार पत्रों से कुछ खास खबरें। श्रोताओं, आज के समाचार पत्रों से जो पहली खबर है वह है, उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग की तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। विद्यार्थी कॉलेजों में केवल रिक्त सीटों पर एडमिशन ले सकेंगे। इस चरण में विद्यार्थियों को उपलब्ध रिक्त सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अगली खबर है, सिंहस्थ 2028 को देखते हुए हमारी आस्था के प्रतीक पंचक्रोशी मार्ग और आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इस पवित्र मार्ग पर जनभागीदारी के माध्यम से लगभग 50,000 ऊंचे पौधे रोपे जा रहे हैं। इन पौधों की ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट से के बीच रखी गई है। मार्ग के किनारे लगभग 12 उपवन बनाए जाना भी प्रस्तावित हैं, ताकि यात्रियों को छाया मिल सके। इन पौधों की सुरक्षा के लिए एस्बेस्टस ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों और स्थानीय ग्रामीण समितियों को भी पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। ये कदम शहर के पर्यावरण संरक्षण और आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव को सुखद बनाने का प्रयास है। और इसके साथ ही आज के समाचार पत्रों में अन्य जो खबरें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत बड़नगर में एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय जनविश्वास शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजनों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही निराकरण करना था। यहाँ लगभग 41 अलग अलग पंचायतों से आए आवेदनों पर सुनवाई की गई। प्रशासनिक टीम ने गांवों में पहुंचकर स्कूलों का भी दौरा किया और वहां बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। साथ ही व्यवस्थाओं में कमी और लापरवाही पाए जाने पर दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन की सक्रियता से ग्रामीणों में ये विश्वास जगा है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है। अगली खबर है, यातायात की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उज्जैन देवास रोड पर मताना के पास फोर लेन के लिए बन रहा नया ब्रिज अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग एक सप्ताह के भीतर इस नए ब्रिज से वाहनों का सुरक्षित आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। ब्रिज के दोनों किनारों पर लगभग 100 मीटर के हिस्से में डामरीकरण का जो कार्य अभी बाकी है, उसे बारिश का मौसम खत्म होने के बाद पूरा किया जाएगा। नए ब्रिज पर वाहनों का ट्रैफिक डाइवर्ट करने के तुरंत बाद पुराने ब्रिज की मरम्मत का काम भी शुरू हो जाएगा। इस पुल के चालू होने से हर दिन सफर करने वाले हजारों यात्रियों को जाम से काफी राहत मिलेगी। अगली खबर है, शहर के विकास को गति देते हुए खजूरवाली मस्जिद अब्दालपुरा और जीवाजीगंज से लेकर गणेश चौराहा तक अटके हुए सड़क चौड़ीकरण कार्य ने अब फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ट्रैफिक डायवर्जन के कारण इस काम को रोका गया था, जिसे अब लगभग 6 माह के भीतर पूरा करने का नया लक्ष्य रखा गया है।
साथ ही अगली खबर है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार इस वर्ष 28 अगस्त को मनाया जाएगा। बहनों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि इस बार राखी के पर्व पर भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा, ऐसा हमारे ज्योतिषाचार्यों का मत है। पंचांग के अनुसार भद्रा काल 27 अगस्त की रात को ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए बहनें 28 अगस्त को पूरे दिन खुशी खुशी राखी बांध सकेंगी। सुबह 6 बज

कर 8 मिनट से 9:48 तक राखी बांधने का सबसे उत्तम मुहूर्त ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताया गया है। साथ ही अगली खबर है, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर की पावन भस्म आरती में शुक्रवार को जाने माने अभिनेता मनोज जोशी शामिल हुए। वे मंदिर परिसर में लगभग 2 घंटे तक मौजूद रहे और वहां के आध्यात्मिक वातावरण में पूरी तरह से भाव विभोर नजर आए। आरती संपन्न होने के बाद अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महाकाल की अपार शक्ति और उस दिव्य अनुभूति को शब्दों के माध्यम से वर्णित नहीं किया जा सकता। मंदिर प्रबंध समिति ने उन्हें सम्मानपूर्वक भगवान का प्रसाद और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। ये उनके लिए एक गहरी शांति और भक्ति से भरा अनुभव रहा। तो श्रोताओं, ये थी आज के समाचार पत्रों से कुछ खास खबरें। आइए अब सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: श्रोताओं, FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण। ये कार्यक्रम है सुप्रभात उज्जैन और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के विकास से जुड़ी हुई कुछ सकारात्मक खबरों की। तो श्रोताओं, अगली जानकारी कुछ इस तरह से है हमारे पास में कि शहर के यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण जो खबर आई है सामने वो ये है कि शासन ने मक्सी बाईपास के निर्माण के लिए भू अर्जन हेतु बजट की मंजूरी दे दी है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा ये बाईपास बनने के बाद उज्जैन मार्ग सीधे नेशनल हाईवे के पुराने बाईपास से जुड़ जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उज्जैन आने जाने वाले वाहन सीधे मक्सी के इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर से निकल जाएंगे और उन्हें मक्सी की पुरानी ब्रिज के नीचे जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। वाहन चालकों की सुविधा के लिए AB रोड के पुराने बाईपास पर रोटरी भी बनाई जाएगी और पुरानी सड़क को 7 मीटर से बढ़ाकर लगभग 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव है। इस प्रोजेक्ट से आवागमन काफ़ी सुरक्षित और तेज़ हो जाएगा। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है ममता।

श्रोताओं, शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी पात्र दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं, वे 31 अगस्त तक स्पर्श पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन आसानी से जमा कर सकते हैं। इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा में मदद के लिए लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही जो छात्र अस्थि बाधित हैं, उन्हें आवागमन की सुविधा के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी दी जाएगी। ये पहल ऐसे विद्यार्थियों के सपनों को एक नई उड़ान देने में बहुत मददगार साबित होगी, ऐसी आशा है। इस खबर के साथ ही आइए सुनते हैं फिल्म कुदरत से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: श्रोताओं, पुनः स्वागत है आपका आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में, और मैं हूं आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM 102.5 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खोले गए हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लगभग 18 से 55 वर्ष तक की महिलाएं अब इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन महिलाओं को लगभग 10,000 रुपये तक का अनुदान और तकरीबन 2,00,000 रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस आर्थिक मदद से वे खुद का उद्योग शुरू कर सकेंगी और अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर पाएंगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं फिल्म हमराज से ये गीत, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

श्रोताओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही सुखद और राहत देने वाली खबर है। पहली बार हमारे उज्जैन जिले के देवासगेट स्थित शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। अब तक परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए इंदौर या भोपाल जैसे अन्य शहरों में जाना पड़ता था। ये मुख्य परीक्षा 7 सितंबर से शुरू होकर लगातार 6 दिन तक चलेगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास होने से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को यहां पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी। इस निर्णय से परीक्षार्थियों के समय, धन और श्रम की बचत होगी। इस खबर के साथ ही आइए सुनते हैं फिल्म कश्मीर की कली से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। सुप्रभात उज्जैन से अपनी दोस्त रश्मि बजाज को दीजिए अनुमति। हम जल्द ही पुनः लौटेंगे 8:30 पर और लेकर आएंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है अब समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा, ताकि हमारा फ्यूचर

0: वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
3: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम लोग अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों

0: और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए

0: का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur declaration focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstel Wynn this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion, but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
3: हमने reforms को लेकर एक clear roadmap बनाया। इस roadmap की प्रमुख दिशा रही है governance level के reforms हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
2: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations, but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier, the approach to regulations was prohibited unless permitted. Mr. Modi said the license raj under earlier governments contributed to unemployment, while his government's production-linked incentive model is creating new opportunities. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth.
3: Duniya ne bada bhayankar ek roop dekha hai in dino. Resources ka weaponization ho raha. Avishwas ka vatavaran vishwa ke liye anek nayi chunautiyan lekar ke aa raha. Lekin aise samay mein bhi duniya भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: Union Home Minister Amit Shah has lauded West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari for handing over 1,129 acres of land to the Border Security Force and Sashastra Seema Bal for fencing along the India-Bangladesh border in the state within 45 days of the new government coming to power. He said the request for the land required for the border fence had been pending since 2014. Mr. Shah was speaking while attending a program at the Sashastra Seema Bal Frontier Headquarters.

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हर सुबह अपने साथ सिर्फ सूरज की नई किरणें ही नहीं लाती, बल्कि एक नई शुरुआत का खूबसूरत अवसर भी लेकर आती है। कल जो अधूरा रह गया उसे पूरा करने का अवसर, कल जहां कदम रुके थे वहां से फिर आगे बढ़ने का अवसर, और सबसे खूबसूरत बात, खुद पर एक बार फिर विश्वास करने का अवसर। क्यों ना आज की सुबह बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर उम्मीदों की रोशनी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हर नया सवेरा हमसे कहता है जो कल नहीं हो पाया शायद आज उसकी शुरुआत हो सकती है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही छोटी छोटी शुरुआतों की, जिससे हमारी ज़िंदगी तो उड़ान भरेगी ही, देश भी समृद्धि की उड़ान भरेगा। और आपकी इस उड़ान में आपके साथ आकाशवाणी उज्जैन से मैं हूं आपकी अपनी आरजे रश्मि बजाज, और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। तो चलिए आज की इस खूबसूरत सुबह को साथ मिलकर यादगार बनाते हैं।

0: दोस्तों, जो बात आज मैं आपसे करने वाली हूँ वो सब जानते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आप एक नागरिक होने के नाते देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्यों के बारे में। आज की इस भागदौड़ भरी सुबह में जब हम सब अपने अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं तो एक बात पर गौर कीजिएगा। हम घर से निकलते ही सबसे पहले जिस चीज़ का सामना करते हैं वो है हमारा ट्रैफिक। अक्सर जल्दी पहुंचने की होड़ में हम रेड सिग्नल जम कर जाते हैं या हेलमेट घर पर ही भूल जाते हैं। हमें लगता है कि चालान से बच गए तो सब ठीक है, लेकिन ज़रा ठहरिए और सोचिए, क्या ये हमारी असली जीत है? बिल्कुल नहीं। टू व्हीलर पर हेलमेट लगाना या कार में सीट बेल्ट बांधना किसी पुलिस वाले के डर से नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की कद्र करने के लिए है। आजकल गाड़ी चलाते हुए फ़ोन उठाना, यहाँ तक कि गाड़ी चलाते चलाते ही कॉल रजिस्टर में से फ़ोन नंबर निकालना और फिर फ़ोन लगाना भी आम बात हो गई है। लेकिन क्या आपने सोचा है, आप अपने साथ साथ किसी और की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो रुक जाइए दो मिनट, या तो बात कर लीजिए या उनसे कह दीजिए कि आप जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पहुँच कर उन्हें आप कॉल बैक करेंगे। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। घर पर कोई आपकी राह देख रहा है।
1: ए भाई दर्द।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: एक भाई जरा देख।

दोस्तों, हम अक्सर अपने घरों को तो शीशे की तरह चमका कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही बात सड़क, पार्क या सार्वजनिक स्थानों की आती है, हमारा नज़रिया क्यों बदल जाता है? एक बहुत ही आम सी आदत है, कुछ खाया और रैपर वहीं सड़क पर फेंक दिया। ये छोटी सी आदत हमारे शहर की खूबसूरती पर एक बड़ा दाग लगाती है। स्वच्छता कोई सरकारी जिम्मेदारी भर नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है। गीला सूखा कचरा अलग अलग रखना ये कोई सरकारी नियम मात्र नहीं है, बल्कि ये तो आपके और हमारे स्वास्थ्य की आज की तारीख की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि गीला सूखा कचरा अलग अलग ना रखने से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, वह सीधा सीधा हमारी सेहत पर असर कर रहा है। अगली बार जब आपके हाथ में कोई कचरा हो तो उसे ज़मीन पर फेंकने से पहले एक पल रुकिए और डस्टबिन तलाशिए।

श्रोताओं, अक्सर जब हम किसी सिटी बस में सफ़र करते हैं या किसी सार्वजनिक पार्क में बैठते हैं तो कुछ लोगों को सीटों को खुरचते या नुकसान पहुंचाते हुए देखते हैं, और तो और ट्रेन में मूंगफली खाकर छिलके फेंकते हुए भी देखते हैं। अस्पतालों जैसी जगहों पर दीवारों पर पान व गुटखे के दाग देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बसें, ये पार्क, ये अस्पताल आखिर किसके पैसों से बने हैं? ये किसी और की नहीं बल्कि हमारे और आपके खून पसीने की कमाई, हमारे टैक्स के पैसों से बनी संपत्तियां हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना मतलब अपने ही घर के सामान को तोड़ने जैसा है। जब हम इन संपत्तियों की देखभाल करते हैं, इन्हें साफ और सुरक्षित रखते हैं, तो हम एक परिपक्व नागरिक होने का सबूत देते हैं। अगर कोई भी ऐसी तोड़फोड़ करता दिखे तो उसे रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। आइए अपने शहर की, अपने देश की हर सार्वजनिक चीज़ को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर उसका सम्मान करें, क्योंकि ये हमारा है और हमारे इस्तेमाल के लिए बना है।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: FMX 2.5 MHz पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम है ये उज्जैनी आरजे और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रश्मि बजाज। श्रोताओं, हम आज बात कर रहे हैं देश के प्रति हमारे कुछ छोटे छोटे कर्तव्यों के बारे में। दोस्तों, सुबह सुबह ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देना या कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखा बंद करना भूल जाना, ये आदतें हमें बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन सच मानिए प्राकृतिक संसाधनों की ये बर्बादी हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पानी और बिजली असीमित नहीं है। आज हम जो पानी की बूंदें व्यर्थ बहा रहे हैं वो कल

मारे ही बच्चों की प्यास बुझाने के काम आ सकती हैं। संसाधनों की बचत करना कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये हम सब आज के समय की सबसे बड़ी मांग है और हमारा सबका कर्तव्य है। जब आप बेवजह जलती हुई लाइट बुझाते हैं या टपकते हुए नल को कसते हैं, तो आप सीधे तौर पर अपने देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की रक्षा कर रहे होते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो आज के संसाधनों को कल के लिए सहेज कर रखना जानता है।

दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ये तो हम सभी जानते हैं। लोकतंत्र में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा वोट है। लेकिन अक्सर हम वोटिंग वाले दिन को महज एक छुट्टी का दिन मानकर घर में आराम करना पसंद करते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। मतदान करना सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक ऐसा परम कर्तव्य है जो हमारे समाज की दिशा तय करता है। बिना किसी लालच, डर या भेदभाव के सही और योग्य उम्मीदवार को चुनना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। जब आप वोट देने जाते हैं तो आप अपने भविष्य और अपने देश के विकास में अपनी सीधी भागीदारी दर्ज करते हैं। ज़रा सोचिए, हम कितनी आसानी से कई असुविधाओं के लिए सरकार पर दोषारोपण तो कर देते हैं, लेकिन वही सरकार चुनते समय हम घर से निकलते ही नहीं, तो फिर हमें शिकायत करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इसलिए एक जागरूक नागरिक बने और जब भी मौका मिले अपनी इस लोकतांत्रिक ताकत का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी से ज़रूर करें। याद रखें, सरकार चुनना भी जीवन साथी चुनने जितना ही महत्वपूर्ण है।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।

एक एक पैसा देश की तरक्की के पहिए घुमाता है। जब आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं तो आप असल में एक मजबूत और आत्मनिर्भर समाज की नींव रख रहे होते हैं। ये वो खामोश योगदान है जो बिना शोर मचाए हमारे भविष्य को सुरक्षित और

दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में हमारे पास जानकारियों का समंदर है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चुनौती भी है, वो है फेक न्यूज़। सुबह उठते ही हमारे मोबाइल पर कई ऐसे फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं जिनकी सच्चाई हमें नहीं पता होती। बिना सोचे समझे किसी भी भड़काऊ या गलत जानकारी को आगे बढ़ा देना समाज में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। एक समझदार और ज़िम्मेदार नागरिक वो है जो किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करता है। हमारी उंगलियों में वो ताकत है जो समाज में शांति भी ला सकती है और नफरत भी फैला सकती है। डिजिटल सिविक सेंस आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अपने मोबाइल का इस्तेमाल जोड़ने के लिए करें, तोड़ने के लिए नहीं। अफवाहों के इस दौर में सच्चाई का फिल्टर बनना ही हमारी असली जिम्मेदारी है।

दोस्तों, हमारा समाज तब तक सही मायने में विकसित नहीं कहला सकता जब तक हम एक दूसरे को बराबरी का दर्जा न दें। महिलाओं का सम्मान करना और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना हमारे कर्तव्यों का सबसे अहम हिस्सा है। जब हम किसी के साथ उसकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करते, तो हम एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण करते हैं। महिलाओं को घर और बाहर सुरक्षित महसूस कराना, उनके विचारों का आदर करना सिर्फ कानून की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है। जब आप किसी के सम्मान के लिए खड़े होते हैं ना, तो आप असल में इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप पेश करते हैं। एक सच्चा नागरिक वही है जिसकी नज़र में हर इंसान की अहमियत और इज्जत बराबर हो।

से जुड़ने वाले आपके सबसे पसंदीदा शो बॉलीवुड बीट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी आवाज़, आपकी अपनी दोस्त रश्मि बजाज। कहते हैं संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है, और जब बात बॉलीवुड के गानों की हो तो हर धुन में एक पूरी कहानी बसती है। आज की हमारी प्लेलिस्ट भी कुछ ऐसी ही खूबसूरत कहानियों और अनकहे जज्बातों से सजी है, और कुछ गाने ऐसे भी हैं जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। तो अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और मज़ा लीजिए इस खूबसूरत सफ़र का। आज के सुहाने सफ़र की शुरुआत करते हैं प्यार की मासूमियत से भरे एक ऐसे गीत से जिसे सुनकर हवाओं में भी संगीत गूंजने लगता है। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये नगमा हर धड़कन की आवाज़ है। जावेद अख्तर के लिखे खूबसूरत बोल, आर डी बर्मन का बेमिसाल संगीत और कविता कृष्णमूर्ति की मीठी आवाज़ में डूब जाने के

साथियों, अगले गीत में एक ऐसी कशिश है और ऐसा जादू है जिसे सुनकर खुद बखुद कदम थिरकने लगते हैं। फिल्म ताल का ये धड़कता हुआ गाना अपनी धुनों से आज भी दिलों में आग लगा देता है। आनंद बख्शी के रचे शब्दों को

AR रहमान के बेमिसाल संगीत ने एक नया आयाम दिया है। आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा की दमदार आवाज़ों में सजी इस जादुई और मदहोश कर देने वाली धुन को का आनंद लीजिए।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उज्जैन से बोल रहे हैं, ये कार्यक्रम है बॉलीवुड बीट्स और मैं हूँ आपकी साथी रश्मि बजाज। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ताल के जादुई संगीत के बाद बॉलीवुड बीट्स में अब वक्त है ताज़ा तरीन और नए एहसास का। जब कोई प्यार के सच्चे रंग में रंगता है तो दुनिया की हर शय बेहद हसीन लगने लगती है। फिल्म स्काई फोर्स का ये गाना इसी रूहानी इश्क की मीठी चाशनी में डूबा है। तनिष्क बागची के कमाल के संगीत और श्लोक लाल के शानदार बोलों ने बेहतरीन समा बांधा है। सतिंदर सरताज और ज़ारा खान की आवाज़ का सुकून सीधा दिल पर दस्तक देता है। तो चलिए इस खूबसूरत मेलोडी में हम और आप भी पूरी तरह रंग जाते हैं।

साथियों, सैटरडे की सुबह में अब माहौल में जबरदस्त एनर्जी घोलने का वक्त आ गया है। चलिए चलते हैं एक ऐसी अरेबिक और ग्रूवी वाइब की तरफ जिसे सुनकर आप झूमने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। प्यार में जब दीवानगी हद से गुजरती है तो इंसान अपना दिल हंसते हंसते दे ही देता है। फिल्म एयरलिफ्ट का ये सुपर एनर्जेटिक ट्रैक इसी बेबाक अंदाज को दिखाता है। कुमार के मस्ती भरे बोलों को धड़कते हुए संगीत से सजाया है अंकित तिवारी ने। अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह की दमदार आवाज में एंजॉय कीजिए ये फुल टैपिंग नंबर।

तो श्रोताओं, अब बॉलीवुड बीट्स का मीटर पूरी तरह से फुल ऑन देसी पार्टी मूड में सेट हो चुका है। बात जब खूबसूरत नखरों और स्वैग की हो तो फिल्म पार्टनर के इस गाने को भला कौन भूल सकता है। ये ट्रैक हर डांस फ्लोर की पहली पसंद है। साजिद वाजिद का ब्लॉकबस्टर संगीत और शब्बीर अहमद के कैची बोल इसे एक परफेक्ट डांस नंबर बनाते हैं। वाजिद, लाभ जंजुआ और स्नेहा पंत की हाई एनर्जी आवाजों में गाए इस गाने पर चलिए हम भी थोड़ा थिरक लेते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाइए और इंजॉय कीजिए।

दोस्तों, बॉलीवुड बीट्स का ये ज़बरदस्त सिलसिला अब अपने चरम पर है। आज का हमारा आखिरी गाना आपके अंदर की सारी एनर्जी बाहर निकाल लाएगा। 90 के दशक का वो बिंदास टपोरी अंदाज जो आज भी हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देता है। फिल्म जुड़वा का ये ट्रैक एक ऐसा धमाका है जिस पर नाचना तो बनता ही है। देव कोहली के शानदार बोल और अनु मलिक के धड़कते हुए संगीत का क्या ही कहना। अभिजीत और पूर्णिमा की मस्ती भरी आवाज़ के साथ चलिए आज के सफर को धमाकेदार फिनिश देते हैं। सुनिए ये एवरग्रीन हिट।

तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी म्यूजिकल महफिल में बस इतना ही। अब आपकी दोस्त रश्मि बजाज को दीजिए कार्यक्रम बॉलीवुड बीच से इजाजत। लेकिन लेकिन लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बस कुछ ही देर में हम लेकर आ रहे हैं आपकी पसंद के गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जिंदगी की बीट्स को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आकाशवाणी उज्जैन के सभी प्रसारण अब आप सुन सकते हैं अपने मोबाइल पर भी न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब समय है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का।

नमस्कार श्रोताओं, आज के इस भागदौड़ भरे डिजिटल दौर में भी जब आपके हाथ के लिखे खत हमारे स्टूडियो पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है मानो आपने अपने दिल का एक हिस्सा एक लिफाफे में बंद करके हमें भेज दिया हो। आपके इन खतों में सिर्फ गीतों के नाम नहीं होते बल्कि उनमें लिपटी होती हैं आपकी कुछ प्यारी यादें, अनकहे एहसास और अपनों के लिए ढेर सारा प्यार। और जब आपकी इन भावनाओं को आपके पसंदीदा संगीत के सुर मिल जाएं, तो क्या कहने। तो आइए, मैं यानी आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज आज फिर से खोलती हूँ आपके खतों की ये जादुई पोटली। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके सबसे अजीज कार्यक्रम आपकी फरमा।

फरमाइश में। चलिए सुनते हैं आज का पहला गीत जो है फिल्म जीवन मृत्यु से। इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। पाशना सिटी उज्जैन से शरद मनोरमा, रूपकिशोर, श्वेता बजाज, रीत और रूपाली काबरा ने। खेल बाजार पानीपत से नरेश लक्ष्य, लाडो कोयल और नानक चंद्र मल्होत्रा ने। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल, डुग्गू और भाविक सिक्का ने। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, कपिल, सविता और स्वाति माखीजा ने। ब्रजधाम कॉलोनी उज्जैन से अर्चना, संजीव और आशु ने। गांधीनगर गुजरात से सुरेश, मंजुला, विशाल और निशा राठौड़ ने।